0: 您前座说话天南家中这档真素老阿城是学清贵体清无法扎发扬木
1: Düsere sancur.
2: Düsere sancur.
3: Sena ba tukung kan su, xa la ma la me ga ma ngai sancur shu yi. Ye zi zhu zhu ni ba zhu xia jun dun ting zhu ji bi din zhu lu du de tu. Zhong gong zhu yang ki xie jie shu ji jia ke zhu yi, zhu yang ma wei zhu zhu yi xie jie ping ge jia zun ka qi. Ma yi xin zhu la xiong na jia ju yu mong cong de tu ge, song xie jie ba ba jun ba zhi. Jia ke dun zi ju ji chan chen la ge na, xie da jie ba ra, Long to Xi Jinping so he now we down to Yang Gi and Jomi Uti War. Sako Kaki Timba Kaki, down to Yang Tan, Yashi Xi Kanki Taju Gudi, Ladara, Dunturo, Nindi Hidi. Then to Yapaji Legi, he won ya, Jujun Hibata. Yichi, Si Juji, Nuba and Dubatam. Guju Septonta, Gomo, Yachiro Yua, Gonu, Sangim, Jinjo Sutua, Pida Gumpatonjura, Juntu, Gubatonwa. Tunhi, Kodara Yeti, Timbu Gunipawa, Le Yota, Sogun Hiyun Timbu Hua, Hiku, Tondun Junior Pawa, Gonu Sabi, Nehu Nibachiru Tunga Tihini, Yama Banjur Kujo, Hiyun Timbota, Pashu Sabata, Libi Hoso, Yutabashi Baji. Tondun Biso, Timba Jiji, Hizi Juini, Ringu Zikula, Kunde Tongwe, Hiyahu Juyen Jimba Hide. Billy Ringu, Timchi, Kondun, ये जा चिरु दुआ दा रिनु चिंचि छे यमाला थुगो छंदु दुआ सोरु दोलिन ह्यायु कोजरा ह्याजु थबा ह्याजु सोहु दुते ने रिनु चिंचि देउ मोरा मांगछुला कोन्दन थजुरा कुनि नोंजु बाजे नोसी बि सो छेबा ये इनि दु न्यानजरो थो हिनिन गे जुर बिदा कोमर तोंजु को जे लादर जु यरा पान दे हिदे हिलो नि दों सुन छुलो लेगे जे दां जु आयुम सो जुरक लोदो छेजे सुनजि हिनि दं जउ वे गेन जुर छेपते जाचा गुजु येमे सिंबा ह्या जुदा हिंदु जिनिन खान गेन सों खोजु गोंजु दां जे थु थबा ह्या जु दले हिनि पाजे दों जु ता छां बिए बंग मो वे हिनिन गेन जु माला हिना जुन थबा ह्या जु रो जे दों नों यु बा जे 中国党一些下路南的几年政策跟年数比六月节南京金元卡节一些注意年代了能让解脱脚当跟的人政策一大个别次注意年轻年纪年把的关心南宁多年准把的一些下路南的节加给决定充满了人政策能有注意一些年轻人政策准把的人员规则数据里段个人的比过年不用把些
4: Hello,年度你住了这个机器学给给其他动物为这张张过的学过,给这句给你,今年应聘多,本国出版党,在那四度组织这边,中华妈妈应对这个节,这个机器学给江城拉达的学习节,其他的人口托马的一把节。Hello,年度你那路巴拉,将用所这个机器学给其他的推测,这些家家顿达差对你十年,出其投币,其他动物为顿仓四八的来一把节。 托尼斯三角茶巴的黑皮托，你做的表演呢？帕里森听见鲁苏布一部长，巴哈姆吉现在就给你。托尼斯亚布萨托姆斯中介多，也是日记。军团把多少黑皮经济帕里森听见，罗马吃顿就对你，满意啰嗦当你黑太着了，就越级性格。阿里新进特朗普阿里对策现在就给你，这人你有托中一百年。 一旦你们和他准确感觉牛头绝日话，一句越级当准确牛头的级别，对吧呢？咔嚓鬼头头就越级。阿里一旦接上做第二，今天接南就人级越级倔强，一旦你第一天那个连刚样见面吧是。一路年多你着绿，要用就别用自己龙骨头边这个当龙骨头边龙井塘不错边这个重庆边用龙井都不好当。 要用三年卡给别用钱，只使用额节，太多电邮巴士。闽南给陆军落了电报的二八档，来清碰着了多吧？铺上电报奖吧，对了，下边没事黑几把钱呢？大厅这些个决断做一把档，写个图，七段论清七把档，别认为住着一把所写呢。要用就别用钱，只那么了，有人简单，有人难别，三轮啰嗦就一把是。落个中间接做呢，成功忙着接，哪张一边问呢？ 扩大学费没得人员真正解决嘛啦，但依然最大扩张一把局。大大人员老少党人员平均卡年月底给，对我们六七党年头平均头让你投的。
3: 张静静接凭借中介代言，忙出去龙穴投一把档，得当就从张静静接罗家中介的面具吹的业余，人不是用久了团结也有把热。大地吃着罗家中介的妈妈面干给 A 一内土档 A 一内大 A 一罗巴的所接麻辣，好用的别去写把热。现在把听的绿色的三角学起来。
5: 下次真过了。
6: 这一阵粗不松节小粗粗一都过去吹呢。俺最容易你家先几点了，先过些把俺的工资用。容给容了，另一是恩用。
7: 每路都下为送你的满一本才拿了盘内让你接新郎过来连接人口小牛啊。俺去写作间总当端当的小女孩家对我们中当的了那就写二牛。
6: 大大切容个图了我家东过来去为能玩动呢连接可是没用呢。让个让那些被欺凌的啦，勇敢行动。咱们确定赞助去别位，先就念个几个呢。咱们没得用着装包车，前年没接起几年，没几个啦，新疆越境界，赶紧车型越界开越。
7: 对呢，张博达安给张些干了人的。前个马车头，你没帮这多家银币，没忙不难当银。俺去上班，前来又被苦不打动儿，出国带他，人家最先俺出面当那，看你云姐姐当着这人上身。
6: 文忠，跟忙不行了，读了双就没把的，读瑞东最先就没当我干了银的，可对没被多钱忙不行，让个让了高银两百银。定日节新康这边老板服务一点，新康带汤了菜叶特别是羊肉的，新康带汤姐姐对男民用来了尊严，年过节没那作为中个月，等到等你来过了桌头呢，你点的刚刚姐姐小娃言行没给送月。
7: 文江，你给南小姐作为侄子谈及这一件，让个这位咱们不抽他，怕嘛病气。跟你罗干难道人家把他人都信了家住个金巴大比信的接单下啊
6: 新港这边罗本一直来应的都是送月的若你去各都定期写给的谁与可有所解现得到没一把的若你去过瘾刚才所应用若了藏币从你写的皮点着月接送月
7: 这一点没有没去写当也让你没把干了一俺去迎接通那人这边我从喜剧的衙内让给让那迎接的想必连接兄当
6: 对我们心就希望呢早晚你都就没把等着干你一点就弄懂热切就弄你让给让了心就这就得应了你听得了心看见碰卡皮皮碰卡爷爷给你就没
7: 爹呢隔离一起当隔离小呢隔离虽然说的大仓嘛总结帮的最大
6: 让给让了宁杰东下差月呢俺最严厉俺最硬的都比咱们不出动怕妈本钱赶紧落个手下差东相接相同
7: 让给让了俺就人在这弄的奇迹不出错了那位俺就第一印度让给让了宣言马日隔离银阿姨送纳入
6: 多纳
7: 对别人你送错啊接到这种缺氧让谁让了王位拆了国家之力让给让了您接到让给让你想起兄弟组入 三康车店啦，多趟弄的。三康车店家早晚西边，带趟个让你当，带趟个小组整个。

0: 다데 나츠 투바다 제하고 인제나 체나바니나 지니 레바가 로주라 간케다 지니 차주라 간케 다데네 지인사 파쟁한 지드링게 리모데 페야부지 용사리 게 로자니마라키 나츠 오투 레바세문데가 다 로지 세문다다 근데 코네 나츠라 지 소나로라
1: 올라소 당가 주제나 베스게 데라 아 원미게 지니나리 아 하정고 몸보지 예비나온 지나미 아니 부여스 진단나 라그르지 장송이 세와 나이게 되네 라다갈 하장 기비게 되리 사자지 이 송장 아니 다 데라 잡조고 코니 하장가 다다 닌다 치비게 리바고 코르 아 데이토니 마지게지
0: 라서
1: 데니 치통게 다 리바 세진다 시다 만자와 아니 인자고 지든지 시에데게 요레 아 데니 가히지 임바이나 데니 데미게 아니 비비게 치송니 마치다다 अने गाही किता जितु मलानी मा जुदांग तोनि हेतो नि युवा इनजा एनी ती खानिका ला चितंग कि जिमसेन राची तिले जि मबो छि जि युवा मा एना यो ता सेदा तंग छु छुमे ओथो रे बास लोजु ने लो गजा हाग लोजु तिले जि युवा देरे आ तिले मा सों जा ता ओथो रे बास जेन द चितंग कि जुदांग रव जि मा छा यावा इना गा छु अने लोजु से या दि छि युन दु काला ngacho ngoye denzo kandri yinba yinna dee toni maa xie guwa yinza ngoye ge ngoye pe pangda yinba yinna jini deere dee mea yinna ngacho mara gu ane nga jun dee mea yinna ane ngacho yi shirab gu yi jia nona kandri kuye mege toni jikda guwa yinba song zang ane ngacho oto reba sa jinda dan dowi khansan ga sacha mambo jinla reba mambo jin chugu yore dee yinba song zang dezo ga genra pa mambo jige samno ta ngane xie yondu kala ya ane ngacho shu nipa jizui mala ane judan ka toni maa ane tezo mambo ji tenri ji zonda ga yore Tendi yinba song zang, tini ko tatsuo ko tsoma anta ji tawi jik zuiba yin nang go lam, ji zui mala reba ge, ni ya, ni kaparan juwaya tang, tini maa ri xie jia yung du ka la yang, pa ji zui mala ribi, ya pa pari chong pa yin, zimba ase ji xie ji jik tang, tini yinba ka chani tara nga tso, ni jilo ji tu yib ja, yinmi ki tunin zi ji ya nga tso, ni lorong chung jong si, kambi ki ta, lo ju ki tunin, yi ja tse den rao ji, di nang lo la, ji zui mala ni juba ge, ni riba chi ji rao ji, maa se yung du ka la, Di nanglo la tan tachi riba rao siye dewa tan, chira riba siye dewa tan, mongpo ji yore. Digi toni mar judang rao ji tan, ta ane nga tso pyo jung la chan tsunwa ina su tinga riba siyan rao tan. Tendi ki ta par yunangu ko lan tachi riba siyan rao tan. Chungpo ka ko la inba ina ya oto riba, zoba riba, ane kacho riba, tonglo riba si, mongpo ji siye ji yore. Deso ta chi ane chupang ka toni inba ri, nga ane chupa judang ka toni inba ina ya, nga tso ane sanglo ji tong yewa ina, अनि जोनी टांटो को तोने माची ही यावा ने जीजू मला ने जुबा लो यू मंदु संसार राजी था तेरी जी योरे ओतो रे पा देना आजो जीजू मला ने पर जुबा नचो में पा तेरी ची छागे योरे ते जंसे करे रे से उन्हें अनि जीजू मला रे पा का रिचों दोजे ट्रापा तेरी जगला अनि रिचों मंदो जगला सों सिने अनि थीमा सों ना चुलेंगा का उन्हें ते जी मत ना जीजू मला रे पा का अनि लोवा रिचों दोजे ट्रापा तेरी जगला लान लान रोदी अनि छो पेमिन राम से आज की तला लनी अनि हाजांग की तोड ग अनि छछन रव जी जेदु लंबो छि ग अनि रो छेन बो जी ये अनि देन ने बा ल देन ने अनि चरु छव न ng मो बि जचु द छव न ng यो त अनि पापा न ng ग ng ग जंग पेन रव जी जु जी ने तिनी आ छव न गोस न जों ग गो जों इ जों छव जों देल देन ने अनि खोरे ग तो हो या त यें यांग ग ता खोरे ग रे पा तिनी अशोत ते माचे बाचे ग खोरे ग ने मलिक सिंह का गतुक ते यें उन दुकाला निमो या मग यें न सें सें मों रे ग मा तुन रा त ता जिम से मों पोची सिया त तिनी तें खर तो से गच ये ति यें उन दुकाला तिनी गटो ग छो त अनि रे पा ते दों तिनी मार ति जितु मला ग या पा परे जों पा यें जेंबा सिने ता तिनी मार आ ये तों जाओ जी तिनी जी यो देले तिनी दु दादा ग रे पा न दे रे छि रे पा न ने लोजु रे छुन रो लोजु लो ग ज्या ला ग लोजु यो यें जा ओतो रे पा ति जो दों
2: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི